0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: अटेंशन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लेटिंग एजेंट्स, आर यू इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ एचएमओ लाइसेंस फॉर योर प्रॉपर्टी? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
7: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM.
16: This is a public service announcement.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: Ya per English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजा 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Haza 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपना.
1: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
10: यू आर लिस्निंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Haza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: This is a public service announcement.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

السلام عليكم. نمستي يا ستياكار. Hello, hello, hello. A very beautiful, breezy and absolute fabulous morning to all my listeners who are listening me right now. जी हाँ लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा. आप सभी को खुशामदीद करती हूँ आपके फेवरेट शो द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 एफएम में. जी हाँ लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम, जहाँ मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट. जी तो लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चलेंगे हम और आप अब से लेके ठीक दो घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार. जी तो लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इंतजार किस बात का है? अभी उठाइए फोन 0115710097. ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, सो जल्दी से इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और हमें कोई भी प्यारा सा पैगाम लिखकर भेज दें. साथ ही साथ आपको बताती चलती हूँ कि radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, सो आप इस वेबसाइट के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं और हम तक अपने पैगामात बजायरा नंबर पहुंचा सकते हैं. और साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 एफएम को इजीली अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका तरीका बहुत सिंपल सा है. जस्ट अ फ्यू सेकंड्स और हमारी एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी. सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर पर, वहां जाकर आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 एफएम और विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन. तो जाइए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें और आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें. जी तो मेरे सभी लिसनर्स, वो तमाम तर लिसनर्स जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर हैं रास्ते में और आप चाहते हैं कि अगर आपका सफर खूबसूरत बन जाए, हंसी बन जाए, तो अपने इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए फजा डैप के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं और 0115710097 के थ्रू आप अपने मैसेजेस, अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं. सो जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त फौरी तौर पर हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके फीडबैक का और मैं चाहती हूं कि आपका और मेरा कनेक्शन कुछ इस तरह से हो कि भले फिजिकली वी आर नॉट कनेक्टेड बट स्टिल हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो कि आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकें. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं मगन होंगे. और आई थिंक सो के 10 बज चुके हैं, यानी कि 10 से भी ऊपर टाइम जा रहा है. तो अब तक आपने अपने दिन का स्टार्ट कर लिया होगा, लेकिन ठहरिए, अगर अभी तक आपने अपने दिन का प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं अपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज, क्योंकि रेडियो फजा 97.1 एफएम का इनिशिएटिव है कि हम बनाएंगे आपके इस दिन को खूबसूरत, यादगार और मीनिंगफुल. तो इंतजार किस बात का है, बस उठाइए चाय का एक मग. अगर आप सोच रहे हैं या फिर किसी उलझन का शिकार हैं या आपके माइंड में कोई भी अनयूजुअल थॉट्स आ रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं कि आज के दिन को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, वो क्या एक्टिविटीज की जाए या फिर आज के दिन में क्या टारगेट्स अचीव की जाए, सो इट्स अ टाइम, इट्स अ मोमेंट. आप चाय का मग उठाएं, बालकनी में खड़े हों, बाहर के खूबसूरत से व्यू को, खूबसूरत से मंजर को एंजॉय करें और साथ ही साथ अपना थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करें.
जी तो लिसनर्स, जैसा कि है आज थर्सडे और थर्सडे के हवाले से कहा जाता है कि जैसा कि मंडे को इंसान जितना फ्रेश होता है, जितना एनर्जेटिक होता है, इंसान के माइंड में ये होता है कि वीक का स्टार्ट है तो कुछ करके दिखाना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नया अचीव करना है। तो यही जो इंसान के अंदर पैशन होता है, एनर्जी होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते थर्सडे तक आते आते थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर थर्सडे से स्टार्ट होती है एक नई जर्नी। यानी कि जो थर्सडे की जर्नी होती है उसमें हम ये सोच रहे होते हैं कि अब वीकेंड करीब है, यानी कि वीकेंड आने वाला है, तो जल्दी जल्दी से वीकेंड आ जाए क्योंकि अब हम थक चुके हैं और ऑलरेडी हमने बहुत काम कर लिया है। लेकिन मेरे प्यारे लिसनर्स और सभी डीवाज जो इस वक्त मुझे सुन रही है, आप सभी से कहती चलती हूँ कि भले हो थर्सडे या हो मंडे, हर दिन बिल्कुल एक सा होता है और हर दिन की स्ट्रगल भी बिल्कुल एक सी होती है। सो वीकेंड ही वो एक वाहिद दिन होता है जहां हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, लेकिन वो रिलैक्स भी चंद मिनटों का होता है और फिर आ जाता है एक हैक्टिक लॉन्ग रूटीन मंडे। क्या आप सभी ने भी ये चीज नोट की है मेरी तरह के? अक्सर औकात मैं वीकेंड्स पर ये चीज फील करती हूँ कि जब मुझे काम पर जाना होता है या फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक आगे पीछे, जाहिर सी बात है हम सभी को जॉब्स पर जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, स्टडी करनी होती है, इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी होती हैं। सो टाइम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली गुजरता है। लेकिन जब वीकेंड होता है, जैसे कि संडे होता है, तो मैं ये चीज फील करती हूँ कि संडे तो 2 मिनट में गुजर जाता है। समटाइम्स मैं सोच रही होती हूँ कि अच्छा मैं आज के दिन ये काम करती हूँ, मैं अपने दिन को इस तरह से प्लान करती हूँ, सेल्फ केयर करती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि विद इन अ फ्यू मिनट्स पूरा संडे गुजर जाता है और फिर आ जाता है दोबारा से वही मंडे, वही कामकाज, वही रूटीन। क्या आप सभी को भी ऐसा फील होता है कि आपका संडे बहुत शॉर्ट और आपका मंडे बहुत लॉन्ग हो जाता है? जी तो लिसनर्स, अगर आप भी मेरी इस बात से रिलेट करते हैं, सो 01157100971 इस नंबर पर जाकर मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप किस बारे में क्या विचार हैं, क्या ख्यालात हैं, क्या थॉट्स हैं। तो इधर लिसनर्स, बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शो को, क्योंकि अभी अब से लेकर ठीक 2 घंटे तक हम और आप तो रहेंगे साथ साथ, गपशप का सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरह से मजीद बहुत सारी गपशप करेंगे और मैं लाई हूँ आज भी अपनी लवली डिवाइस के लिए बहुत सारी मजेदार सी चटपटी रेसिपीज। सो टाइम को बिल्कुल जाया नहीं करते, जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छे दिन का आगाज होता है एक अच्छे, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से, एक अच्छे मील से, क्योंकि हमारे दिन को, हमारी जिंदगी को, हमारी बॉडी को जरूरत होती है एक्स्ट्रा एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होने की। सो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है एक अच्छे, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से, एक मील से। सो उसी तरह से माइंड को फ्रेश करने के लिए, सोल को फ्रेश करने के लिए दिन के स्टार्टअप पे जरूरत है हमें एक अच्छे म्यूजिकल ट्रैक की। तो जी लिसनर्स, सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक। इस म्यूजिकल ट्रैक से उस पार आपसे होती है दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से रेडियो फजा 97.1 FM को सुनते रहिए।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ अभी तक आपका माइंड फ्रेश हो चुका होगा। जो लोग डल डल नींद में होंगे उनकी नींद खत्म हो चुकी होगी। सो अभी वक्त है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। तो जी लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब और कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से मजेदार सी बहुत सारी गपशप होगी। सो स्टे ट्यून विद अस, अभी चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 एफएम में. टीवी लिसनर्स, ये एक शॉर्ट सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है. सो आप सभी को एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि 01157100971 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर. सो आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं. इस नंबर के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने हालात हमसे शेयर कर सकते हैं, क्या चल रहा है आपके माइंड में और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो सभी बातें जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको सुने, सो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं. इसके साथ साथ बताती चलती हूँ कि radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. यानी ये वो वाहिद वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं और अपने इस दिन को खूबसूरत बना सकते हैं. और जो तमाम तर लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर हैं किसी भी सफर में या अपने डेस्टिनेशन के करीब करीब पहुंच चुके हैं, सो आप सभी के लिए कि आप फजा डैप के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने सफर को मजीद मेमोरेबल बना सकते हैं. सो जी लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने काफी गपशप की और आई थिंक सो कि अभी तक आप सभी का माइंड फ्रेश हो चुका होगा. सो आप प्रॉपरली आगाज करते हैं अपने इस शो का. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने हर शो का स्टार्टअप करते हैं एक खूबसूरत, एक पॉजिटिव और एक मोटिवेशनल बात से, ताकि हमारा बाकी का जितना भी दिन है वो खूबसूरत गुजरे, अच्छा गुजरे और हमारी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स रहें और जितनी भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में सर्कुलेट कर रही हैं वो थोड़ी देर के लिए साइड पर हो जाएं. सो आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूं मैं एक ऐसा ही खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा कोट जो बना देगा आपके इस दिन को, आपकी जिंदगी को. सो आप सभी से शेयर करती हूं, उम्मीद करती हूं आपको ये कोट अच्छा लगेगा. सो बेसिकली आज का हमारा कोट ये कहता है कि शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ द वॉटर अराउंड देम, शिप्स सिंक्स बिकॉज ऑफ द वॉटर दैट गेट्स इनसाइड देम. So basically, don't let what's happening around you get inside you and weigh you down. So basically, अगर आप इस बात को दिल से समझें तो ये आपके सोचने का नजरिया बदल देगी. So basically, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यानी कि समुद्री जहाज यानी कि ships अपने आसपास के पानी की वजह से नहीं डूबते. जहाज तब डूबते हैं जब पानी उनके अंदर चला जाता है. सो बेसिकली अगर हम सिंपली बात करें, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे इन्वायरमेंट में जो सब हो रहा है वो हमें तब तक अफेक्ट नहीं करेगा जब तक कि हम खुद उससे ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो आकर हमें अफेक्ट करे. सो बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें इर्द गिर्द के आसपास के इन्वायरमेंट से फर्क पड़ता है. सो बेसिकली आपको इन्वायरमेंट से फर्क नहीं पड़ता, आप अलाउ करते हैं इन्वायरमेंट को कि वो आपको अफेक्ट करे. सो बेसिकली माय लवली डिवास और मेरे सभी लिसनर्स, डेली बेसिस पर आजकल की जिंदगी जैसा कि काफी फास्ट हो चुकी है और हम आजकल रोजाना डेली बेसिस पर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलते हैं जिनकी नेगेटिव बातें हम सुनते हैं. और बाज़ुकात हर एक इंसान का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और समटाइम्स लोग आपको जो नहीं है इनकरेज करते हैं आप जो कुछ कर रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं. वो आपको कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ का तो कोई पर्पज ही नहीं है या तुम अच्छा नहीं कर रहे. लेकिन द मेन थिंग इज कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं कि हमें अफेक्ट करे. अगर हम दूसरों की बातों को खुद से ज्यादा वैल्यू करेंगे, खुद से ज्यादा तवज्जो देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम उनकी बातों से असरअंदाज होंगे और जो कुछ हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं हम उस तरह से, उस फ्लो से नहीं कर पाएंगे. सो आपने क्या करना है, आपने आसपास इर्द गिर्द की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना. मैं ये नहीं कह रही कि क्रिटिसिज्म अच्छी चीज नहीं होती, क्रिटिसिज्म अच्छी चीज होती है क्योंकि ये हमें मजीद बेहतर बनाती है. लेकिन
आप दूसरों के क्रिटिसिज्म को सुने, उनकी बातों को ऑब्जर्व करें, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें और कोशिश यही करें कि आप अपनी लाइन और लेंथ में सीधा चलते रहें। इधर उधर आसपास जो कुछ हो रहा है इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हों, आगे बढ़ें, आगे जाएं, सो इधर उधर की बातों को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें और अपनी जिंदगी पर फोकस करें। वेल, उम्मीद करती हूँ कि ये कोड आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपकी जिंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव तब्दीली जरूर आएगी। सो अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, सो 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो जल्दी से जाकर इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहां आपने कुछ न्यू ट्राई किया हो और बहुत सारे लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया हो, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल किस तरह से है। बाज़ूकात ऐसा होता है कि हम ऐसी सोसाइटी में, ऐसे इन्वायरमेंट में बिलोंग कर रहे होते हैं जहां के लोग हमें एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं, ना कि एज अ फ्रेंड। सो कोशिश करें कि बी केयरफुल इन योर सर्कल और अच्छे लोगों में उठे बैठे जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, हंसी बनाएं, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइफ इज वेरी शॉर्ट। सो जिंदगी में कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, अनलेस कि अगर आप उस पर मेहनत करें तो आप उस छोटे से काम में भी मजीद आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। सो इसी खूबसूरत सी बात के साथ साथ अभी शो में वक्त हुआ है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक का, तो एक म्यूजिकल ट्रैक शामिल करते हैं और फिर आगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा और आई थिंक सो आप सब सोच रहे होंगे कि काफी ज्यादा हमने फिलोसफी के बारे में बातें की और काफी ज्यादा सीरियस डिस्कशन हुई, लेकिन अब वक्त है हमारे शो में आगे बढ़ने का। जैसे कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी होता है, सो अब हम शो में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ फीमेल्स का फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि कुकिंग इटसेल्फ इज अ आर्ट, इज अ स्किल, और बहुत सारे लोग कुकिंग को इस तरह से लेते हैं जिस तरह से हम कुछ आर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ स्किल कर रहे हैं। और जिन लोगों को कुकिंग पसंद नहीं होती तो उन लोगों के लिए आई थिंक सो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन मुझे कुकिंग करना एज सच इतना पसंद नहीं है, लेकिन समटाइम्स कभी कभी दिल करता है कि मैं खुद के लिए कुछ ट्राई करूँ, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, सो मैं कभी कभी कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन एज सच मैं कुकिंग फैन नहीं हूँ, बल्कि बनाने से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं। वेल लिसनर्स, इस बारे में आपका क्या कहना है? 0115710971 है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, सो आप इस नंबर पे मुझसे शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको खाना पकाना अच्छा लगता है या फिर खाना खाना।

जी तो लिसनर्स, कहा जाता है कि हर एक इंसान की कोई ना कोई हॉबीज होती हैं, कुछ ना कोई चीजें होती हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, फैसिनेट करती हैं। अगर पर्सनली बहुत सारे लोगों को कुकिंग बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है और इट्स लाइक अ लव लैंग्वेज कि आप अच्छा सा खाना बनाओ और अपने लव्ड वंस को खिलाओ और उनसे पूछो कि उनको आपका बनाया हुआ खाना कैसा लगा। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसी मजेदार सी रेसिपीज जो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, लेकिन जब आप उनको कहीं फाइव स्टार होटल में या फिर रेस्टोरेंट में जाकर ट्राई करते हैं तो आपको लगती हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन हम आज उन्हीं रेसिपीज को बनाएंगे बिल्कुल सिंपल करके, इजी करके अपने मेथड से, ताकि वो बिल्कुल सिंपल हो जाए, इजी हो जाए और आप उनको इजीली ट्राई कर सकें। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी ही रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं द स्पाइस किचन, लेकिन उससे पहले

तो लिसनर्स, उससे पहले मैंने सोचा कि कुकिंग से रिलेटेड क्यों ना एक खूबसूरत सा कोट आप सभी से शेयर किया जाए. सो कहा जाता है कि अ रेसिपी हैज नो सोल, यू एज द कुक मस्ट ब्रिंग सोल टू द रेसिपी. यानी कि आप रेसिपी को अपने अकॉर्डिंग, अपने मुताबिक बना सकते हैं. कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं होता कि जो फिक्स रेसिपी है आप उसको ट्राई कर सकते हैं. अब बहुत सारे शेफ्स क्या करते हैं कि वो डिफरेंट चीज़ों का फ्यूजन ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हर दफ़ा रेसिपी को एक न्यू तरीके से, एक न्यू मेथड से ट्राई करें, ताकि समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट लोगों को दिखने को मिले, खाने को मिले. सो इसी तरह से आज भी जो हम रेसिपीज बनाएंगे, होंगी तो वो बेसिक सी रेसिपीज, लेकिन हम उनको बनाएंगे अपने मेथड में, ज़रा डिफरेंट करके. सो आज की हमारी फर्स्ट रेसिपी है अल्फ्रेडो पास्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है. आई थिंक सो आप सभी ने ट्राई तो की ही होगी, लेकिन आज हम उसको बनाएंगे सिंपल करके, इजी करके, बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट से. सो आप सभी से इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ और आप जल्दी से उनको नोट कर ले ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए. सो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पास्ता. आप कोई सा भी पास्ता यूज कर सकते हैं. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ पैनी. वन पैकेट आप इसको ले लें, इसको अच्छे से बॉईल कर लिए, साइड पर रख दें. साथ ही साथ हमें चाहिए चिकन 250 ग्राम्स. आप बोनलेस चिकन यूज कर सकते हैं, उसे क्यूब्स में कट करके रख लें.

अच्छा, इस रेसिपी का हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बटर 3 टेबलस्पून, जिसे हम यूज करेंगे इस रेसिपी के अंदर। साथ ही साथ हम यूज करेंगे गार्लिक, लहसुन 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुआ हुआ। साथ ही साथ हमें चाहिए इस रेसिपी में फ्रेश क्रीम 1.5 कप, यानी कि 1 फुल एंड 1 हाफ कप, और हमें चाहिए पार्मिजान या फिर मोजरेला चीज 1 एंड हाफ कप, यानी कि 1 फुल कप एंड 1 हाफ कप। अब बात करते हैं स्पाइसेस की, जो कि हर रेसिपी को बनाते हैं खूबसूरत और डालते हैं रेसिपी के अंदर जान। सो इस रेसिपी में हम यूज करेंगे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ओरिगेनो 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 एंड हाफ टेबल स्पून, और नमक हसबे जरूरत हसबे जायका।

जी तो लिसनर्स, ये थे सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सबसे शेयर कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि किस तरह से हम इस रेसिपी को विद इन 10 मिनट्स बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हम उसमें शामिल करेंगे चॉप्ड लहसुन। डालने के बाद हम बिल्कुल इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन और इसे तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए, हल्का सा व्हाइट हो जाए और हमारा चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। याद रखिएगा कि कभी भी इसे ज्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक करने की सूरत में जो हमारी रेसिपी है वो दिखने में खूबसूरत नहीं लगती, प्रेजेंटेबल नहीं लगती। तो अगर आप चाहते हैं कि खाना दिखने में भी और खाने में भी दोनों सूरत में अच्छा लगे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस कुक करें। अब 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद हम इसे निकाल कर साइड पर रख लेंगे। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि द अल्फ्रेडो सॉस। अब इसी पैन में हम क्या करेंगे, बचा हुआ जो बटर है हमारा उसको शामिल कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और इसे हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसी क्रीमी सॉस के अंदर हम शामिल करेंगे नमक, काले मिर्च, ओरिगैनो, चीज। इन सब इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद अच्छे से इसे पकाएंगे चम्मच चलाते चलाते, जब तक हमारी चीज बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए और हमारी जो सॉस है वो बिल्कुल थिक ना हो जाए। इस टाइम पीरियड तक हमने इसको पकाना है। याद रखिएगा कि हमने सॉस को इस कंसिस्टेंसी में रखना है कि वो बिल्कुल थिक भी ना हो और बिल्कुल थिन भी ना हो, यानी कि एक प्रॉपर बैलेंस फ्यूजन हो। सो बारी आती है हमारे लास्ट, हमारे फाइनल स्टेप की, यानी कि अपनी इस रेसिपी को असेंबल करने की। सो इस फाइनल और लास्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इसी क्रीमी सॉस के अंदर शामिल कर देंगे वो पास्ता जिसे हमने सबसे पहले बॉईल करके रख लिया था साइड में, इसे ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम शामिल कर देंगे वो चिकन जिसे हमने पका के रखा था और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और डडा, हमारी रेसिपी हो गई तैयार। आई होप सो कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक क्लास में शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इस बारे में आपका क्या कहना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, 01157100971 है आपका और मेरा राबते का नंबर, यानी कि इस नंबर के थ्रू से आप मुझसे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वो तब भी बातें शेयर कर सकते हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान किसी उलझन का शिकार होता है, इंसान का दिल चाहता है कि कोई उसे सुने, उसे समझे। तो आप वो सभी बातें भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे ही सकती हूँ। सो लाजमी शेयर करिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब।

अच्छा, हमारी जो आज की नेक्स्ट रेसिपी है, बहुत सारे लोग इसे एज अ कम्फर्ट फूड खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे नॉर्मली भी खा लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी होती है. सो आज हम बनाने जा रहे हैं मैक एंड चीज़. सो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी से इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ, और आप जल्दी से इन इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लें ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए. सो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैक्रोनी, जिन्हें हम अच्छी तरह से बॉईल करके रख लेंगे 2 कप्स. हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बटर 2 टेबलस्पून. साथ ही हमें चाहिए मैदा, या फिर आप कोई सा भी फ्लोर यूज कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप मैदा यूज करिए. ठीक है, आपने 2 टेबलस्पून ले लेना है. इस रेसिपी में शामिल होगा मिल्क 2 कप्स, करते हैं स्पाइसेस की, क्योंकि स्पाइसेस ही बनाते हैं हर रेसिपी को फ्यूजनल, हर रेसिपी को यूनिक और हर रेसिपी को अच्छा. सो इस रेसिपी में शामिल होगी काली मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1.2 टेबलस्पून यानी कि 1 फुल एंड 1 हाफ, मस्टर्ड पाउडर 1 फुल एंड 1 हाफ टेबलस्पून, और साथ ही साथ नमक हसबे जरूरत हसबे जायका. आती है हमारे फाइनल इंग्रेडिएंट की, यानी के मोजरेला या फिर चैटर चीज. इट्स टोटली अप टू यू, जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास इजीली अवेलेबल है आप वो चीज यूज कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि अगर आप इसमें चैटर चीज यूज करें, क्योंकि मैं हमेशा इसको उसी में बनाती हूँ. सो डियर लिसनर्स, इसी के साथ साथ वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ब्रेक की जानेब, और ब्रेक से वापसी पर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM विद योर फेवरेट आरजे ज़ैनब फातिमा. जी तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मज़ेदार मैक एंड चीज़ की, सो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए थे. अब बारी आती है उसके प्रोसीजर की कि किस तरह से हम इसको इंस्टेंटली बना सकते हैं और वो भी कुछ ऐसे कि जल्दी से बन जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा डिलिशियस.

और इसे 1 मिनट के लिए भून लेना है। जब आपको लगे कि मैदे का कलर काफी हद तक चेंज हो चुका है, सो बस अब इसमें खुशबू आ चुकी है, सो आपने वहीं तक इसको कुक करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा द चीजी सॉस, कि हम किस तरह से चीज सॉस को बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, इस पे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क शामिल करते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच को हिलाते जाना है, ठीक है। जब हमारा जो दूध है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाए, तब बारी आती है कि हम इसमें शामिल कर दें नमक, काले मिर्च, पेपरिका और मस्टर्ड पाउडर। यानी कि चूल्हे को बंद करें और इसी गर्म सॉस में 1 कप चीज़ डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। गर्मी से चीज़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी और एक खूबसूरत येलो क्रीमी सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। सॉरी लिसनर्स, मेरे गले में थोड़ा सा मस्ता हुआ है तो जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी थोड़ी क्रैक हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इस आवाज़ को खूबसूरत और बरकरार रखूँ। सो जी, किस तरह से हमने इस खूबसूरत सॉस को रेडी करना है, कि जब हमारी सॉस थोड़ी थिक हो जाए, इसे चूल्हा बंद करके उसमें हमने चीज़ डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि हमारी जो सॉस है वो गर्म होगी, सो वो चीज़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी और एक मज़ेदार सी क्रीमी सी चीज़ी सॉस रेडी हो जाएगी। अब बारी आती है इस सॉस में उबली हुई मैक्रोनीस को शामिल करने की। सो अब हम शामिल कर देंगे मैक्रोनीस। मैक्रोनीस शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे एक बेकिंग डिश में निकालें, ऊपर से बाकी बचा हुआ कप चीज डालकर पूरा कवर कर लें। अब हम इसे रख देंगे माइक्रोवेव ओवन में 5 to 10 minutes के लिए, ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और टडा, आपकी रेसिपी यानी कि मैक एंड चीज हो गई तैयार। देखा कितनी सिंपल सी थी, कितनी बेसिक सी थी। ये वो सभी रेसिपीज हैं जो बहुत सिंपल बहुत बेसिक हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बाज़ुकात कि जब हम रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छी लगती हैं, बट समहाउ जब हम सोचते हैं कि हम इनको घर में ट्राई करें तो हमें ऐसे फील होता है कि इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और यही सब सोचते सोचते हम इनको ट्राई नहीं करते। लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी अगर आप इसको ट्राई करेंगे। सो लाजमी ट्राई करिएगा आज की अल्फ्रेडो पास्ता और मैक एंड चीज़ को, क्योंकि डेली बेसिस पे हम वही बेसिक से खाने, चटपटा चिकन, रोटी, सालन, ये सब खा खा के बोर हो जाते हैं। सो हमें ज़रूरत होती है थोड़े से डिफरेंट की, थोड़े से चेंज की। सो इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा ताकि थोड़ा सा लाइफ में चेंज लाए, क्योंकि चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, कहीं भी जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी, या फिर कुछ भी कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ चेंज, क्योंकि चेंज इज़ नेसेसरी, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।

जी तो लिसनर, जहां हमने बात की इतनी मजेदार सी चटपटी सी रेसिपीज की, वहीं अगर हम मीठे की बात ना करें सो ऐसा तो हो नहीं सकता। खाने को मजेदार डिलिशियस बनाता है हमारा मीठा। सो आज का डेजर्ट भी कुछ इसी तरह से है मजेदार सा। इंग्रेडिएंट आप सभी से शेयर करती हूँ क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मोल्टन लावा केक, जो कि बहुत डिलिशियस और बहुत यमी है, एंड आई थिंक चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये हेवन है। सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ आप सभी से। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट 100 ग्राम्स, जिसे हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में करके रख लेंगे। द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज बटर 50 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि 3 to 4 टेबल स्पून। आई एम सो सॉरी, समटाइम्स मैं थोड़ा सा ब्लेंडर मार देती हूँ, लेकिन आपने बटर कितना यूज करना है, ओनली 50 ग्राम्स। साथ ही साथ हमें चाहिए एग्स 2 अदद, शुगर 3 टेबल स्पून, बिल्कुल बारीक पीसी हुई, मैदा 3 टेबल स्पून, और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का वनीला एसेंस 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, बेसिकली वनीला एसेंस क्या काम करता है, वनीला एसेंस हमारी रेसिपी में टेस्ट ऐड करता है, एक अलग सी फ्रेग्रेंस देता है। सो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट में शामिल करिएगा ताकि आपकी रेसिपी बने अच्छी, मजेदार और यमी।

अब जरा रेसिपी की जाने भी बढ़ते हैं, लेकिन ठहरिए, इतनी जल्दी क्या है, सुनते हैं ये मजेदार सा म्यूजिकल ट्रैक, क्योंकि इंसान को साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की भी जरूरत होती है, साथ ही साथ गपशप की भी। सो आपकी बोरिंग सोल को बनाते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक।

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा मजेदार सा साउंड ट्रैक? आई होप आपको ये साउंड ट्रैक अच्छा लगा होगा, क्योंकि पर्सनली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट साउंड ट्रैक्स इन दिस डेज, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। इसीलिए लिसनर्स एंड माई लवली डिवास, मैंने आप सभी को भी ये ड्रामा सीरियल रिकमेंड किया था। आई होप सो कि आप सभी भी ये देख रहे होंगे। अगर तो आप ये देख रहे हैं तो लास्ट में मुझसे शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपको ये सीरियल कैसा लगा। 01157100971 है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का नंबर, सो आप इस नंबर पर जाकर मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा, प्लस इस सीरियल में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, ये सभी आप शेयर कर सकते हैं मुझसे और फिर हम इस पर मजीद और डिस्कस करेंगे। तो जी लिसनर्स, वापस से कंटिन्यू करते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को, क्योंकि आई थिंक सो कि माई लवली डिवास वेट कर रही होंगी कि कब ये रेसिपी कंप्लीट की जाएगी। सो इंग्रेडिएंट्स तो आप सभी से मैंने शेयर कर दिए थे, अब हम बनाते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बाउल में डार्क चॉकलेट और बटर, इन दोनों चीजों को ले लेना है, ठीक है। इसे माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। अब आपने क्या करना है, एक और बाउल ले लेना है, ठीक है। इस बाउल में आपने शामिल करने हैं अंडे, पिसी हुई चीनी और इसे बीटर की मदद से या फिर आप हाथ की मदद से भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लें, जब तक कि आपका जो बैटर है वो बिल्कुल वाइट और फ्लफी ना हो जाए। जब लगे आपको कि आपका बैटर हो गया है तैयार, तो इस वक्त आप शामिल कर दें इसमें वनीला एसेंस। अब इस अंडे वाले मिक्सचर में आपने शामिल करना है मेल्टेड चॉकलेट और बटर को, ठीक है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। आखिर में 3 टेबलस्पून मैदा चीनी इसे अच्छे से डाल दे, ठीक है। बस हल्का सा फोल्ड करें, ज्यादा मिक्स नहीं करना। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे बाउल्स ले लेने हैं, इन्हें अच्छी तरह बटर से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। स्टील बाउल्स लेने हैं और फिर इसके अंदर कोका पाउडर या फिर मैदा इसको हल्का सा छिड़क दे ताकि जो केक है वो बिल्कुल भी आपस में ना चिपके। अब आपने सभी बैटर को इन बाउल्स के अंदर डाल देना है 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म ओवन में सिर्फ 10 से लेकर 12 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से कुक करें और 10 टू 15 मिनट्स के बाद आपका मजेदार सा चॉकलेट मोल्टन लावा केक हो जाएगा तैयार, जो कि बहुत ही ज्यादा यमी, बहुत ज्यादा डिलिशियस होगा। बस आपने क्या करना है, इसे 4 से 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर आने देना है एंड देन फिर आपने इसे निकाल लेना है और आप फ्रेश व्हिप्ड क्रीम से इसे गार्निश कर सकते हैं ताकि दिखने में ये और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। और साथ ही साथ इन एडिशन आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो डार्क चॉकलेट एक्स्ट्रा मेल्ट करके रखी थी उसे इसके ऊपर डाल दें ताकि आपका केक और भी ज्यादा टेम्प्टिंग दिखे। तो जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की रेसिपीज, अल्फ्रेडो पास्ता, मैक एंड चीज एंड फाइनली डेजर्ट जो कि था मोल्टन लावा केक, क्योंकि डेजर्ट के बिना कोई भी खाना अधूरा है और खाना तभी कंप्लीट होता है जब कुछ मीठा हो जाए। सो ये तो थी हमारी आज की रेसिपीज, इनको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी। और ऐसी मजीद मजे मजे की रेसिपीज जानने के लिए आप रेडियो फजा 97.1 FM को इसी तरह से लाइव ट्यून करते रहिए। जी तो माई लवली डिवास, इसी के साथ साथ हमारे शो का वक्त हुआ जाता है खत्म। आई नो कि बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि गपशप करते हुए, बातचीत करते हुए इतना मजा आ रहा है कि दिल कर रहा है कि हम बस बातें करते जाएं, लेकिन वक्त की डिमांड है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी को आगे लेकर चलना है। सो आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए हमें अलविदा कहना पड़ेगा। समटाइम्स कहा जाता है कि बाज गुड बायज बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन
इंसान को फिर करना ही पड़ता है क्योंकि ये जिंदगी का दस्तूर है. सो इसी दस्तूर के साथ साथ हमारे शो का वक्त हुआ जाता है खत्म. शो खत्म हो रहा है लेकिन लिसनर्स आपकी जिंदगी, आपकी सुबह, आपका दिन अभी बाकी है. सो कोशिश करिए कि हमारा जो आज का कोट है जो कि ये कहता है कि आप कभी भी दूसरों की बातों को खुद पर असरअंदाज मत होने दें, इसे याद रखें क्योंकि यही है आपकी स्ट्रेंथ और यही है आपकी मोटिवेशन. इंसान जितना अच्छा खुद को खुद मोटिवेट कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई दूसरा इंसान को उस तरह से मोटिवेट कर सकता है. इसी के साथ साथ अपनी होस्ट आपकी आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाजत. आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ, एक नए दिन के साथ और एक नए एम्बिशन के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दिन को खूबसूरत बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए और साथ ही साथ उन सभी लोगों का ख्याल रखिए जिनकी जिंदगी आपकी जिंदगी से कनेक्टेड है. तो जी लिसनर्स, दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ. जाते जाते ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक इंजॉय करते जाइए.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवान एंड ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलू राज। खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह मेरी बड़ी खूबसूरत आवाज़ यानी कि इट्स मीन कि सलू राज की आवाज़ है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही। तो बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन। मेरे से पहले प्रोग्राम जो किया उसमें मज़ा आया या नहीं आया। आया तो होगा भाई, हमारी ट्रांसमिशन कोई भी ऐसे नहीं है जिसमें मज़ा ना आया आपको। जो घर बैठी है वो 3 बजे सुन रही है, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रही है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको करना सिर्फ ये होगा कि बड़े खूबसूरत से नंबर इस नंबर को करना है सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है और बताना है कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है, 01157100971। इसको कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल कर सकती हूँ। फिर ये होगा ना कि सिर्फ आप मेरी बकबक नहीं सुनेंगे बल्कि मैं भी आपकी आवाज़ सुन लूँगी। पर ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं चलती बल्कि वक्त से चलती है। 2 घंटे का टाइम होता है मेरे आपके दरमियान, और टाइम जो है वो तकरीबन 12 से 2 बजे तक ही होगा, और टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। वो कहते हैं ना कि जब मुझे जब आपके साथ मज़ा आने लग जाता है ना तो वो मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे आपसे इजाज़त चाहनी होती है। बट वो एक मैंने बात भी पढ़ी थी कहीं पर कि जब आप कोई खाने की चीज़ लेते हैं और आप उसको खाना शुरू करते हैं और जब आपको मज़ा आने लगता है और वो ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है, जब मुझे मज़ा आने लगता है तो मेरे शो का टाइम ख़त्म हो जाता है। खैर, जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। और जो लोग ऑफिस की तरफ निकल चुके हैं और ऑफिस में जाते अगर बॉस की डांट पड़ चुकी है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बट आपके मूड को सही कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होइएगा, अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी चले जाएं और वहां पर जाकर आप रेडियो फजा को ट्यून कर लीजिएगा। बशर्ते कि इंटरनेट आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट मांगने में थोड़ी सी शर्म भी आती है, लेकिन ज़्यादातर अब नहीं आती, क्योंकि अब हम किसी घर जाते हैं तो पहले पहले रिवाज होता था कि भाई पानी का ग्लास मांगा जाता है, लेकिन अब 10 सेकंड बाद क्या मांगा जाता है, ज़रा वाईफाई का पासवर्ड तो दे दीजिए। सवाल इसी के साथ साथ आप मुझे गूगल पे भी सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं, मतलब गूगल पे तो नहीं सुन सकते, मतलब सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम कौन सा आरजे किस टाइम पे करता है, सवाल वो आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से radiofaza 97.1 FM के नाम से। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मीडिया आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट, लेकिन उससे पहले जो है प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत ट्रैक के साथ। हमेशा की तरह प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक शामिल करते हैं, उस टॉपिक के बाद से डिस्कस स्टार्ट की जाती है। कल आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने 5 टॉपिक जो है प्रोग्राम में शामिल करवाए थे, और उनमें से डिसाइड जो है वो 2 किए गए थे, और उन 2 टॉपिक्स पे जो है ना वो डिस्कस स्टार्ट की थी। बट मेरे ख्याल में जो बाकी 3 रह गए थे ना उनमें से 1 को आज जो है ना प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन आप बताएंगे तभी करेंगे, ऐसा तो नहीं ना हम कर सकते। कोई मैसेज किसी प्यारे को पहुंचाना चाहें जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर कोई ट्रैक आप किसी को डेडिकेट करना चाहें, सो आप कर सकते हैं प्रोग्राम में शामिल होकर। सैड ट्रैक बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल को सेंटिमेंटी नहीं बनाना, लेकिन अगर फरमाइश आएगी तो फिर करना तो पड़ेगा। लेकिन प्रोग्राम में शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों।

पर जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं अपने मनपसंद ट्रैक, तब तक आप सुनिएगा सल्लू राज के पसंदीदा ट्रैक्स, क्योंकि आपकी फरमाइश जब तक हम तक पहुंचेगी तब तक तो है मुझे अपनी पसंद की ट्रैक शामिल करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपका मैसेज मैंने कहा कंप्यूटर पर जगमगाएगा, सो मैं चुपके से उस फरमाइश को शामिल कर दूंगी प्रोग्राम में। बड़बी के लिए कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत ट्रैक के साथ। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम का आगाज क्या था, एक बड़ी खूबसूरत से ट्रैक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है प्रोग्राम में एक और फरमाइश को शामिल करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको निराश ना किया जाए। आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगी तभी तो मेरा काम बनेगा।

हाँ जी, तो मुझे ट्रैक मिल गया। मुझे ना थोड़ा ढूंढने में दिक्कत महसूस होती है, पता नहीं क्यों। एक तो मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ भी होती जा रही हूँ, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शामिल कर चुके हैं एक और खूबसूरत सा ट्रैक छोटी सी फरमाइश पे। आइए मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़ा रहना है फसा के साथ विद सलू राज।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सफल प्रोग्राम में शामिल किया था बड़ी मजा से ट्रैक, और ये ट्रैक मैं काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड जाने मेरे पास फरमाइश पहुंच रही है, फिर मैंने इसको सुना तो यार मैंने कहा वो अच्छा, ये वो वाला गाना है।

सो सॉरी, बीजीएम आपको थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई देने को मिल गया, बट कोई बात नहीं, मैं बात कर रही थी प्रोग्राम के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैक शामिल करवाया था और ये ट्रैक मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, बट मैंने इसके रील्स में देखा था, इसको सुना था, लेकिन बट अब वो मुझे मिल भी गया, मैं इसको अपनी वीडियो पर भी लगा सकती हूँ। फिर मुझे मैसेज आया मेरे पर्सनल नंबर पे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सलराज? सलराज एकदम ठीक, परफेक्ट, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह आपके साथ साथ। और पूछा जा रहा है कि सलराज की आज आवाज़ बड़ी खुशी खुशी वाली लग रही है, तो यार आप लोग मुझे कैसे पहचान लेते हैं? मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुश होना पड़ता है अब उन 2 घंटों में जो मैं आपके साथ आके स्पेंड करती हूँ। प्रोग्राम में बात शामिल करेंगे। मेरे पास ना मैंने रात को जो है फ़ोन स्क्रॉल करते हुए एक बड़ी ही प्यारी बात मेरे सामने आई, तो मैंने उसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने सोचा कि इस बात को आप तक पहुंचाऊंगी, आप इसको सुनेंगे। अच्छी बात होती है कि जब आप कोई अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो फिर वो आगे किसी क्या हो गया था वो आगे फिर किसी को अपने थ्रू पहुंचाते हैं, तो ये बातें जो है ना फैलती रहती हैं। तो अच्छी बात जो है ना ज़्यादातर फैले तो अच्छा ही होता है। बात यह है कि बस इतनी सच्चाई के साथ जिए कि जब कोई आपसे ये कहे कि तुम्हें तुम्हारे किए का फल ज़रूर मिलेगा तो वो दुआ लगे, बददुआ नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन अगर दूसरों का बुरा सोचेंगे तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपने दिमाग में अपने दिल में किसी के लिए किसी भी तरह की कोई भी बात रखते हैं तो वो गलत चीज़ होती है। अब मुझे किसी ने कहा था कि जब आप किसी पे किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, तो अगर उस इंसान ने वो चीज़ की भी नहीं होगी तो आपको तब तक गुनाह मिलता रहेगा जब तक वो इंसान वो चीज़ कर नहीं देता। सो एहतियात करें, किसी के बारे में किसी तरह की भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को देखें, अपने आप को देख कर जिए, क्योंकि अगर कोई इंसान ज़िंदगी में खुश है किसी भी तरह से तो उसके हिस्से के दुख आपने नहीं देखे होंगे, तो इसलिए खुशियों की वजह भी खुशियों के टाइम भी वो अकेला ही जो है वो साथ हो सकता है। और मैं यही कहती हूँ कि जिस इंसान ने आपका मुश्किल टाइम में साथ दिया हो उसको हमेशा याद रखें, जो दुखों में आपके साथ हो उनको अपने साथ रखें, खुशियों के हकदार भी वही होते हैं। किसी के आंसू की वजह ना बने, किसी की वजह से आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। सो वह बादशाह आपके साथ चलती रहेगी, बट प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक भी शामिल करेंगे, क्योंकि फरमाइशें जो है मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा ही आने लगी हैं, तो कोशिश ही करूँगी कि मैं उनको पूरा कर दूँ। बट मुझे ये कि ढूंढने में बहुत मसला हो जाता है, और ढूंढते ढूंढते जो है वो रात हो जाती है, और ढूंढते ढूंढते टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे लाफिस करना पड़ जाता है, और वो मैं कर नहीं सकती, लेकिन मुझे फिर भी करना पड़ता है। सो वेल, आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। इस ट्रैक के उस पार में भी शायद मेरे आपको दिमाग एक छोटी सी बैठा लो, अगर नहीं हुई तो हम आपको ज़रूर मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना फजा के साथ विद सलोराज।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को। रेडियो फजा 97.1 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बुक्स लॉन्च। आवाज आप सुन रहे हैं सलोड आज की। सो सॉरी, आपको बीजीएम थोड़ा एक्स्ट्रा सुनाने को दे दिया, वो मैंने कहा आप याद कर लेना कि ये सलोराज के प्रोग्राम का बीजीएम है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा एक्स्ट्रा सुना देते हैं आपको। सुबह प्रोग्राम में छोटी सी कमर्शियल ब्रेक खाना हो चुकी थी और कमर्शियल ब्रेक पा रही है आपसे मुलाकात। जिन नए लोगों ने आज रवि फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 01157100971 के थ्रू। ये हमारे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कीजिएगा और मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। आज का टॉपिक भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, बट उसके लिए जो है हम थोड़ा सा चेक करें कि आज के दिन के वास्ते कौन सा टॉपिक होना चाहिए प्रोग्राम में। लेकिन कोई टॉपिक आप शामिल करवाना चाहें तो आप भी करवा सकते हैं। बड़ी की प्यारी बात एक सामने आई है, तो क्यों ना आप तक पहुंचा दें कि जो आपका छुड़वा कर जाना चाह रहा है उसे जाने दीजिए। हो सकता है आपको बेचारा मजबूर हो, या हो सकता है कल को उसको आपका एहसास हो। सो आई डोंट नो ऐसा कुछ होगा भी या नहीं, बट कोई बात नहीं, प्रोग्राम में इस बात को शामिल किया है। बट जो जो इंसान आपसे बेसार है, जो इंसान आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो उसको जाने दे। ज़बरदस्ती पकड़ के रिश्ते नहीं बनाए जाते भाई, इस बात को आप भी माने और मैं भी इस बात पर जो है वो एग्री करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को मानने में। खुद पर यकीन की ताकत रखें। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसको उसका अपने आप पर जो है ना यकीन होता है। जब हमें खुद पर भरोसा करने जब हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो मुश्किल रास्ते भी जो है ना वो आसान लगने लगते हैं। सो कोशिश करें, ख्याल रखें कि किसी की ज़िंदगी में, किसी के दिल में वो पौधा ना लगाएं जिसको आप पानी नहीं दे सकते, क्योंकि बाद में जो है वो बहुत से मसले मसाले पैदा हो जाते हैं। सो कोशिश यही करें रखें यही करें कि आप फासले रखें। वो मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब क्या था, मुझे याद करके बताती हूँ मैं आपको। मुलाकातें हद से ज़्यादा हो जाएं तो गम मिलते हैं, इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया, कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें भी और नहीं भी रहें, मतलब उनकी मर्जी के मुताबिक चलें, तो

ऊपर नीचे टाइम मतलब हालात हो जाते हैं कि इंसान जो है ना वो बेकाबू हो जाता है, खुद को संभाल नहीं पाता। लेकिन है कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि किसी के छोड़ के जाने का ना आपको वो दुख जो है ना छोटा सा महसूस हो, ना कि बहुत बड़ा दुख महसूस हो। बातें करना वही बात आ गई कि बातें करना बहुत आसान है लेकिन उस चीज़ पे एग्री करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो वक्त की कदर करें,

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। बात कर रहे थे हम टॉपिक शामिल करवाने की कि टॉपिक आज के दिन के हवाले से कौन सा होना चाहिए। सो मैंने एक बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक ढूंढा और मैंने सोचा कि क्यों ना उसके हवाले से प्रोग्राम में डिस्कस स्टार्ट की जाए।

0: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और लंच बॉक्स लॉन्च आवाज आप सुन रहे हैं सुरराज की से। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है गपशप आपके साथ जारी रहेगी, बट शामिल करवाएंगे एक छोटा सा टॉपिक। टॉपिक में बड़े ही मजेदार से आप सबके लिए ढूंढ कर आई हूँ, उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद भी आएगा। लेकिन इस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन आप भी मुझ तक पहुँचानी है। कैसे पहुँचानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रोग्राम में शामिल होने का नंबर बड़ा ही प्यारा है, नो तरीका बड़ा ही प्यारा है, वो 1157100971। सो बात करेंगे मुसीबत में हौसला। मुश्किल वक्त इंसान की असल हिम्मत जो है ना, तब पता चलती है जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है। लेकिन उससे पहले इंसान कभी नहीं सीख सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टाइम आता है कि इंसान जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों पे सर्वाइव करने लग जाता है जिसके बारे में उसने कभी पहले सोचा भी नहीं होता। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, वो जब ज़िंदगी में होती हैं तो एक दफ़ा झटका लगता है, लेकिन फिर जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंसान उस चीज़ को कैरी कर लेता है, उस चीज़ पर जो है ना पूरा का पूरा उतर आता है कि उसने उस चीज़ को कैसे लेकर चलना है।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Bazaar 97.1 FM.
3: Hit music. Back to back.

जी हाँ, तो बात हम कर रहे थे कि प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल हुआ है वो है मुसीबत में हौसला। सो ज़िंदगी में जो है ना मुश्किलात आती जाती रहती हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन असल पहचान मुसीबत की यही होती है कि इंसान मुश्किल वक्त में अपना हौसला कैसे कायम रखता है। परेशानियाँ हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सो अगर कभी बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है, क्योंकि वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता। समझदार इंसान जो है वो हालात से घबराता नहीं है, हौसला जो है वो इंसान का कायम रहता है। लेकिन अगर एक आखिरी टाइम में जो है वो थक जाए, अक जाए, तो फिर जो है ना वो इंसान जो है ना वो पीछे की तरफ जाता रहता है। जब आप एक चीज़ को माइंड में बिठा लेते हैं ना कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, तो आपका दिमाग पकड़ पकड़ के उसी चीज़ को जो आपके दिमाग में लेके आएगा, वही चीज़ आएगी जो आपको पीछे की तरफ लेके जाएगी। सो उन आदतों को, उन चीज़ों को चेंज करें जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं। क्योंकि याद रखें कि अंधेरी रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, बस ज़रूरत जो है वो है यकीन की, सब्र की और मुसलसल कोशिश करने की। लेकिन उसी के साथ साथ प्रोग्राम में गपशप के साथ जारी रहेगी। प्रोग्राम में एक छोटी सी मुझे बेखास होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक को शामिल कर देते हैं, क्योंकि फरमाइश हमारे पास मौजूद है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: We are playing Fizzan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Huzzah 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अप
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
8: जो मंगना सी वो तो मिल गया.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज
8: फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Haza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: Esplay Pizza
1: from 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-201-0792.
3: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे. हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का.
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार क्या,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजान 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्म कश्म में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: कमर्शियल टाइम।
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
10: यू आर लिस्निंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
11: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
12: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
11: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
12: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
11: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
12: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
11: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
12: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
11: टेस्ट भी वाइब भी।
13: You are listening 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: जबरदस्त हिट्स,
9: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
10: फजा 97.1 FM,
11: आई लव इट।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore, only in Dedication Hour.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27th मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल

0: 669 मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
7: hayatweddings.co.uk।
8: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115 929 8484 या 0777

0: भी मौजूद है और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पार्क फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: You're listening to 97.1 FM. This is Lady Faza.